जीवनयाता शीतलता जीवनयाता जीवित अलिना छेगु जीवनया पला पला नहीं किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: life-changing quotes. पैसालाई भगवान बनायो भने यसले हामीलाई दानव बनाइदिन्छ। यो भनाई हो हेनरी फिल्डिङको।
1: What's the secret to success?
2: Simple. Say yes to radio advertising.
1: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
2: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
1: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
3: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
5: यू कैन डांस,
6: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
7: जस्ट ट्यून इन
6: किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़, योर कंपेनियन, द रेडियो ऑफ न्यू जनरेशन।

0: Just move your feet. Just move your feet. Enjoy the dance beat. Enjoy the dance beat. Dance beat. Friday, 8 a.m. and Saturday, 6 p.m.
1: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ
2: के
1: इ
2: इ
3: बी
4: एस
5: किप्स 98.3 एफएम योर कम्पानियन
6: किप्स एफएम 98.3 प्रेजेंट ब्यूटी हेल्थ एन्ड लाइफस्टाइल

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: बिहीबार दिउँसो 3 बजे शनिबार साँझ 5 बजे
1: मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्जमा
2: मेरो मन छैन बसमा तिमीलाई 10 दिन्छु 10 मा केलाई गरिराको प्रश्न फसे फसे फसे तिम्रो जवानीमा मस्त
3: केही नौलो
4: रोचक
3: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 एफएम मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
4: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 एफएममा
5: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब
6: तुम बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
7: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
8: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल
6: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स Every Sunday, 9 p.m., Tuesday, 6 p.m.
9: Pehla nasha, pehla khuma.
6: Station, KIFS FM 98.3 MHz.
9: Naya pyaar hai, naya intezaar.
10: Does your computer UPS has no more backup time as before? Are you looking for battery replacement for your computer UPS? If yes, Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics has a solution for your problem. Protect your computer and hard disk drive from frequent power cuts with reliable sealed maintenance-free, long-life, SMF batteries. Also, we do exchange with your old batteries. Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics, Kulishwar, Kathmandu. Contact number 5302678. 5302678.

0: Today.
1: पूरे एक घंटा तीनोटा मूवीज का सुपरहिट गीत हरू
2: थ्री इन वन
3: एवरी सैटरडे 9 AM एंड थर्सडे 6 PM
4: एंजॉय द कवर वर्जन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स कवर मेनिया एट 98.3 कवर मेनिया एट 98.3
5: Every Monday 5 PM and Friday 8 PM. Classic Hindi pop time.
6: चलने लगी हैं हवाएं, सागर भी लहराए.
5: Classic Hindi pop time at KIPS FM 98.3.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: विश्व जगत मा साताभरि घटेको प्रमुख खबर सँग अपडेटेड रहनको लागि सुन्नुहोस् Weekly Roll News मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा ट्यून इन गर्नुहोस् हरेक आइतबार बिहान 7 बजे अनि हरेक सोमबार बेलुकी 8 बजे
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
2: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
0: Classic Hindi Pop Time at KIPS FM 98.3.

0: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौ मेत
1: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
2: किप्स 98.3 FM मा गजल संसार
3: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
2: गजल संसार
3: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
4: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
5: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
6: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
5: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: हिप्स 98.3 एफएममा गजल संसार
1: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
0: गजल संसार
1: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
2: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे

0: FM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
0: Every Friday 12 p.m.

0: 하셔야 내부세 종미다.
1: 수태야 사리 천이세 사드 버지다가. Station Kips FM 98.3 MHz.
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Kips FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
5: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678. 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
6: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत. जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको.

0: FM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
0: Every Friday 12 p.m.

0: listen to your favorite classic English songs. Only on English Retro Numbers. English Retro Numbers every Monday 9 p.m. and Wednesday 9 a.m. Station Gibbs FM 98.3 MHz.
1: पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका तपाई हाम्रो आफ्नै लोक कला र संस्कृति अब एकै थलोमा कार्यक्रम
2: भञ्जाङ चौतारी
1: प्रत्येक दिन दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र किप्स एफएम 98.3 MHz.
3: Best romantic Hindi song.
4: रब दिखता है यारा मैं क्या करूं कुछ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं
3: Every Sunday 9 p.m. and Tuesday 6 p.m.

0: Life-Changing Quotes. सफल मानिस र असफल मानिस दुबै गल्ती गर्छन्, तर सफल मानिसले आफ्नो गल्ती दोहोराउँदैनन्। यो भनाई हो हेरोल्ड प्रिन्सको।
1: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार।
2: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
1: गजल संसार।
2: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
0: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
3: stay connected with your favorite station, Keeps FM 98.3 megahertz.
4: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
3: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
5: You can dance.
6: You can sing. All you gotta do is...
7: just tune in.
8: Keeps FM 98.3 megahertz, your companion.
9: The radio of new generation.
10: Teri jhap jhap batti gaera hairanai bhayo.
11: अब धन नान मान्नुस्, नन स्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
12: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
13: What's the secret to success?
4: Simple. Say yes to radio advertising.
13: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
13: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
14: हामीलाई सुन्नुहोस् www.keepsfm.com मार्फत। जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको।
15: सौन्दर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम ब्युटी हेल्थ एन्ड लाइफ स्टाइल Keeps FM 98.3 मेगाहर्जमा शनिबार बेलुकी 7 बजे, मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे।
16: नेपाली पप गीतहरूको उतार चढाव, कुन गीत कुन स्थानमा छ, साथै नेपाली पप गीतहरूबाट भरपूर मनोरञ्जन लिन सुन्न नभुल्नु होला। Keeps Most Wanted, Keeps Most Wanted।
17: हरेक शनिबार मध्याह्न 12 बजे, आइतबार राति 8 बजे र मंगलबार बिहान 9 बजे।

0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा।
1: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं के रेडियो कीप्स एफएम मा। तेरी झ्याप झ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो।
2: अब धन्ना नमान्नुस्, नन स्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
3: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्, ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।

0: history of rock.
1: Monday, 3 p.m. Only on Keeps FM 98.3 MHz, your companion.
2: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ
3: के
2: ई
3: बी
4: एस
5: किप्स 98.3 FM योर कम्पानियन
6: किप्स FM 98.3 MHz प्रेजेन्ट्स बेस्ट रोमान्टिक हिन्दी सॉन्ग्स

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: life-changing quotes. सफलता अन्तिम होइन, असफलता घातक होइन, तर तिनको गणना जारी राख्ने साहस हो। यो भनाई हो विन्स्टन एस चर्चिलको।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
2: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3।

0: नेपाल भाषा या न्याय बुझेचौं नि त
1: सुथेया 6:30 निसे 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज।

0: best romantic Hindi songs. Romantic Hindi songs. Best romantic Hindi songs. Every Sunday 9 p.m. Tuesday 6 p.m. Station Gifts FM 98.3 MHz.
1: History of rock.
2: Monday 3 p.m. Only on Keeps FM 98.3 MHz, your companion.
1: You can dance.
3: You can sing. All you gotta do is
4: just tune in.
3: Keeps FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
5: हामीलाई सुन्नुहोस् www.keepsfm.com मार्फत. Just tune in, radio नयाँ जेनेरेसनको.
6: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्रैक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी.
7: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कुलेश्वर काठमांडू. फोन नंबर 5302678 5302678. लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स.
8: नेपाल चलचित्रका सदाबहार गीतहरू Wednesday and Saturday 2 p.m. Thursday 10 p.m. only on Keeps FM 98.3.

0: number 18.
1: जमाने की तरह हम भी तोड़े हैं गए।
0: मूवी
2: पति पत्नी और वो दो।
0: सॉन्ग
2: हमने वही लगाया दिल।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा। आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स एफएम मा। तेरी झ्याप झ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो।
1: अब धन नमान्नुस्, नॉन स्टॉप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। शुरुआती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
2: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्, ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
3: You can dance,
4: you can sing, all you gotta do is
5: just tune in.
4: Kips FM 98.3 megahertz, your companion, the radio of new generation.

0: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम ब्युटी हेल्थ एन्ड लाइफ स्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्जमा शनिबार बेलुकी 7 बजे, मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे।
1: Keeps FM 98.3 megahertz. Your companion. Your companion. Your companion. Keeps FM 98.3 megahertz presents Top 20 Bollywood Countdown Show.

0: Don't change the station. We'll be right back. You are listening to Kips FM 98.3 MHz, your companion. Just tune in.
1: 하즈 न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेंज फैसिलिटी
2: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स